कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार कूड़ सोयना।

0: निवेश गौरा हो अपराधी दुना निवे चो हंता मृगा शीस नवाये क्या थिए जरि देख सुदे जाहे महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिलपूट सबगल समादन मुख झूठ बिभुखन सारंग त्रिपाल तिहाल विचारंग गलमाला तनक लिलाटंग दुतोती वस्त्र कपाटंग जय जान स्प्रमंग कर्मंग सफोकट नेचो कर्मंग कहो नानक नेचो त्यावे विनस

कुर्बण अरतें आवहीं तुद जी से जन जुग में सुखवसी से मुक्त पै जना हर ते आया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तपतापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया कटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचे आर मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सवनी ते आया जिसना कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संयोगी मेल जिसना तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद मिन दूजा अवर ना कोए तू कर वेखे हैं जाने हैं सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पाइले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजों मोह पग नहीं चले हम देखा तहें डूबियले मान एक ना चेतस मूड़ मना हर बिसरा तेरे गुण गले आ रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणव तनानक तिनकी शरणा जैना तू नाही बिसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काय तिर किते ना काम मेला साध संगत
ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸ੍ਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ।

राया कहो नानक हमारी चिकरम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमया सेवा साध न जन्या हर राया कहो नानक हमनी चिकरम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई अम्बरी करो हद रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे।

तिनके दुष्ट दुख तोहवाए मरे, पुरख जान पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरियो, ताकि ताप तन कमाए हरे हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट शाह शवै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें सुबारा, कल फांसती तहें उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो वारी, सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तर नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाय, बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो, सिरियस पान कृपा तुम भी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखने दोहरा, सगल दोहर को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा, सगल दोहर को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा, राम कली महला तीजा अनंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता वाया सह सेती, मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया, शब्दो तंगावो हरी केरा, मान जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब मसारना, अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना, सवना गलना समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, सच्चे साहिबा, क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किच है, जिस दे हैं सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी,
नाम मान्य वसावे, नाम जिनके मन वसया, बाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं घर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैनों भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसया, जैनों इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहों, जिस दियाँ एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संत हो, शब्द तर प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंशव तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीती, काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होआ, तित हर अनाहद बाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पर ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल भसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सरसे, पूरे गोरते जानी, सुनते पोनी, कहते पवित्र।

धतुरे सुनत बनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदा मणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर।

प्रेम गह मोहे हर रंग पीना पेखे आओ लालन पट बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन तिसी को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिसही को तीना पिखिया लालन पट बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीना तिसी को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिसही को तीना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ढंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ सर बोलो सर्व कला डोलन ते नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने कहा ही बारंग बार बार प्रभ जपिए वार वार वार वार रिंदे स्वासा तक वाहि

अकसत नाम श्री की आख्या बार प्रभ जपिए पी अमृत एक सरकार ने भजन किया सो ओई सो जप दिन राती कहे ओई ओई ओई ओई सो मैंने ओई एक है कह के जप दिन राती सो जप दिन रे जी चले तुहारे साथी सो जप दिन राती रे जी चले किसे ने नहीं जाना जय मात पिता मन लिखिया मात पिता सुत मीत ना भाई लिखिया है पढ़ लो एक बार जिन्ना जन्न श्री सुखमनि साहब आउंदी एक बार पढ़ लो जह मात पिता अर्थ भी आउंदा कि नहीं आऊ बीबी नूं अकाली पग वाले सरदार जी दे पिछे बैठे पुत अर्थ आउंदा जिथे तेरी मां तेरा मित्र तेरा प्यो कोई सहाय नहीं होगा ना उथे नाम ने सहाय होना आखो वाहेगुरु जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऐ तरह कह के मन ऊहा नाम तेरे जिथे किसे ने नहीं जाना मर मेरे भूले कपट ना कीजे अंत नबेड़ा तेरे जीप है लीजे ये सारिया गल्ला मेरे गरीब नवाज ने उस तरह कीतियां भी जिस तरह तानू समझ लग जाए क्या सोचे बारंग बारा क्या सोचे हर का नाम ना जपस गवारा गवारा गवारा मींज मूर्खा अपने आप नू कहो इन्हां को मैं लोकां नू कहन दिया अपने बाणी प्रभु की सबको बोले मैनू भी कहन दे हर का नाम ना जपस क्या सोचे बारंग बारा कल तो जपांगे जी परसों तो जपांगे जी बाबा कबीर एक बड़ी प्यारी चोट मारदा कहिंदा काल करमता अबे कर जिहड़ा कल तो शुरू करना ही हुण तो शुरू कर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु

क्या बात है, क्या बात है। जुड़ दो, सोचा छड़ दियो। ये ना सोचो घर नू कदों मुड़ना है, उस घर चो चुक के लै जाना किसी ने। इत्थे आओ जितों कोई चुक नहीं खड़दा। अकत सतनाम श्री, एक भजन किया जे उस घर विचों चुक के लै जाना। इत्थों सुन के जाम के दूत आए आए, जदों बाहर सुनिया भी वाहिगुरू वाहिगुरू अंडिया, उत्थों मुड़ गए। सुन के जाम के दूत नाए तेरे लिखिया, भरोसा करो, अर्थ बनाओ, उन्हें घोट के पीओ अपने अंदर, ताड़ा डर दूर हो जाए, मौत तो ताड़ा डर दूर हो जाए। एक सरकार ने वचन किया भी गर गुर का शब्द लगो मन मीठा, बोलो फिर बोलो, ताते रमैया घट घट डीठा। जदों तुहानू गुरु का शब्द मिठा लग जू ना, एक एक शरीर च रमैये दे दीदार होणगे। जिन्हों लगा ही ना मिठा आखो वाहिगुरू, जिहड़ा कहिंदा ना मोको तू नाम बसार, तू नाम बसार, जिहड़ा तरला पाउंदा सी तू नाम बसारे रामैया, कहिंदा सी सोने की सुई

रामदास पातशाह दे दरों करो नवाजे होए गुरु के सिख कीर्तनी आए। बैठो घर जाके की करना है, रोटी खानी सौंजना है, अद्धा घंटा 20 मिनट जिन्ना चिर बह सकते बैठो ते रब्बी बाणी दा कीर्तन सुनो, भुला ना चितारियो, असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

क्वे न जाने तुमरा अंत चेते उचाप गवंत सकल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते हो स्वाग्या तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी।

श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखां नूं सिखी

आद पुरख करतार, करण कारण सब आपे, सर्व रहो भरपूर, सगल घट रहो बे आपे, बे आपत दे।

0: जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जिही क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बल हार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जिही क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बल हार
1: सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं त्यानं उचे ते उचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाके बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हरख वंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत इक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहू थे रहो।

कवण जोग कौन ज्ञान त्यान कवण विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम ना परिय बरमादक सन काद शेख गुण अंत न पाए अगो गिहो नहीं जाए पूर सर्व रिहो समाए जय काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते प्रभ दातो दातार परयो जाचक की शरणा मिले दान संतरेन जे लग पौजल तरणा बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावे बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पौन में जन नानक गुरपार ब्रह्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुरपार ब्रह्म।

तुझ पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहेब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुल मावे सो कहो। गुर अमरदास कारण करन जीव तू रखे तिव रहो। गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यो तत्।

0: बड़पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दर्शायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास अन पौ ठहरायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास अन पौ ठहरायो।
1: सिमरं सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मलनासी सतगुर चरण कमल रिद धारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं गुर रामदास कर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो शब्द गुरु पर कास्यो।